जिस जो हरि स्वस्थ स्थित दीवान अपाग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तग माला फैला।

नानक तो मुख अंतर पाए जज मैं जोर शली चंद्रावल कान कृष्ण जादम पया पार जात गोपी ले आया वृंदावन में रंग किया कल मैं बेद थर बन हुआ नाम खुदा यल हो पया नील वस्त्र ले कपड़े पैरे तर पठानी अमल किया चारे वेद हुए सचया पड़े गुणे तिन चार विचार पाऊ भगत कर नीच सदाए तो नानक मुखंतर पाए पौड़ी सतगुर बिटो बार आदित मिले खसम संभाले दिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया इनी नेत्री जगत ने हलिया खसम छोड़ दूजे लगे डूबे से बन जा रिया सतगुरु है बोई थर।

गुण चंगे आइया तत् सबको निवे आपको पर को निवे न होए तर तारा जी तू लिए निवे सो गौरा होए अपराधी दूना निवे जो हंता मिर गाहे शीस नवै क्या थी है जा हृदय कुस दे जाए महला पहला पढ़ पुस्तक संध्या बादन सुल पूज सुबगल समाधन मुख झूठ विभूखण सारंग त्रैपाल तिहाल विचारन गल माला तिलक ललाटन दुए धोती वस्त्र कपाटन जे जानस ब्रह्मं करमं सब उपने चो करमं कहो नानक निह चो त्यावै बिन सतगुर

गो ब्राह्मण को कर लाव गो व्रत न जाई, तोती टिक्का तेज माली धान मिले शंखाई, अंतर पूजा पढ़ हिंक ते बस निमंत्र का पाई, छोड़ी ले पखंडा नाम ने जाहि तरंदा महला पहला।

कोई महला पहला मन का सुत को लोभ है जे वह सुत कोड अखी सुत को वेखना पर त्रै पर धन रूप कन्ने सुत कन पहला इतवारी खाए नानक साधनी पति जमपुर जाय महला पहला सबो सुत परम है।

पौड़ी चक्र लगे चक्री जे चले खसमें पाए, होर मत सुनो गणियों बजो भेदूना खाए, खसमें करे बराबरी।

0: जित सर जाए सो करे जित सर जाए सो दे।
1: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
2: सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब।

सिखानु सिखी दान केश दान रहत दान विवेक दान विसाह दान प्रोत्साह दान दान अंसर दान नाम दान श्री अमृत सर जिया दे दर्शन स्नान चौंकियां झंडे वंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन्नीवा मत उची मत पत दा राखा वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो। श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरु धामां दे जिन्हां तो खालसा पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दे दार सेवा संवाद।

सो कहो टल गुर सेविए अहनस सहज सुवाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसम दी

दोहरा गया भई अकाल की सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की जो प्रभु को मिल बोच है खोज शब्द में।

जाके घर सब किश है पाई, नौ निद भरे भंडार, तिस की कीमत ना पवे पाई, ऊंचा अगम अपार। जी जंत प्रत पालदा पाई, नित नित करदा सार, सतगुर पूरा भेटिया पाई, शब्द मिलावन हार। सच्चे चरण सरेवी है पाई, भ्रम पौ होवे नास, मिल संत सभा मन मांझिए पाई, हर के नाम निवास। मिटे अंधेरा अज्ञानता पाई, कमल होवे परगास, गुर बचनी सुख उपजै पाई, सब फल सतगुर पास। मेरा तेरा छोड़िए पाई, होइए सब की तूर, कट कट ब्रह्म पसारिया पाई, पेखे सुने हजूर। जित दिन विसरै पार ब्रह्म पाई,

प्रेम पदार्थ नाम है पाई, माया मोहन विनाश। तिस पावै ता मेल लय पाई, हिरदय नाम निवास। गुरमुख कमल प्रगासिया पाई, हृदय होवै परगास। प्रगट भया प्रताप प्रभ पाई, मौलिया तरत आकाश। गुरपुरै संतोखिया पाई, एहन सलागा पाओ। रसना राम रवै सदा पाई, साचा साधु सुआओ। करनी सुन सुन जीविया पाई, नेह चल पाया था। जिस पर तीत न आवई पाई, सो जियड़ा जल जाओ। बहुगुण मेरे सहबै पाई, हौ तिसके बल जाओ। हौ निर्गुण आरे पालदा पाई, दे निथावे थाओ। रिजक संबाहे सास सास पाई, गूड़ा जाका नाओ। जिस गुर साचा भेटिया पाई, पूरा तिस करमाओ। तिस बिन घड़ी ना जीविया पाई,

पाई से नित नित मर दे चूर अंचल लाए तराया पाई पौजल दुख संसार कर कृपा नदर निहाले आ पाई

0: शरण जो हो ए, बोले वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
1: सतनाम वाहे गुरु साहिब जी।

मुख देख गरु सुख पायो, हूती जो प्यास पीयूष पवन की, बंछद सिद्ध को बिद मिलायो, पूरन पो मंठोर बसो, रस बासन ज्यो दें दिस्तायो, गोविंदवाल गोविंदपुरी, सम जलन तीर पिपास बिनायो, गयो दुख दूर बरखन को, सो गुरु मुख देख गरु सुख पायो। समरथ गुरु सिर हाथ तरयो, गुरु कीनी कृपा हर नाम दियो, जिस देख चरण अगन हरयो, निसबासुर एक समान ध्यान, सो नाम सुने सुत भान डरयो, भन दास वा जगतर गुरु की, पारस भेट परस करयो, रामदास गुरु हर साथ कियो, समरथ गुरु सिर हाथ तरयो।

गुरु गोर गोर करहो गुरु हर पाइया उदद गुर गहर गंभीर बेअंत हर नाम नागहीर मन मिलत लिवलाइय फुन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैल दुर्मत हिरत शब्द गुर त्याइय अमृत परवा छुटकंत सद द्वार जिस ज्ञान गुर बिमल सर संत सिख नाइय नाम निर्वाण निर्धान हर उर तरहो गुरु गुर गुर करहो गुरु हर पाइय गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मन रे जाकी सेव शिव सिद्ध साधिक सुर असुर गण तरहें तेतिस गुर बचन सुन कन रे फुन तरहें ते संत हित भगत गुर गुरु करहें तरयो पहलाद गुर मिलत मुन जन रे तरहें नारदाद सनकाद हर गुरमुखें तरहें एक नाम लग तजो रस अन रे।

गुरु मुख देख गरु सुख पायो, हुती जो प्यास पीयूष पिवन की, बंछद सिद्ध को बिद मिलायो, पूरन पौ मन ठौर बसो, रस बासन स्यो जो दहंग दिस तायो, गोबिंद वाल गोबिंद पुरी सम, जलन तीर विपास बनायो, गयो दुख दूर बरखन को, सो गुरु मुख देख गरु सुख पायो।